देवी रुद्रम च केशवम पञ्चदैवत विद्युक्तम सर्वकर्म सुपूजे एवं यो भजते विष्णुं रुद्रम दुर्गम गणाधिपम भास्करम च धियाम नित्यम सकदाचि।

0: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाई हाम्रो अटुट साइनो।
1: सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन, नेभर मिस एन अपडेट फ्रम टिप्स अफिसियल।

सुसना संगीत मनोरञ्जन को अटुका हिनो यो हो पश्चिम चितवन को आवाज सामुदायिक रेडियो साहिनो साहिनो साहिनो 89.8 मेगाहर्ट्ज।

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंड हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।